क्या पता चल रहा है कि जो पूरी तरह कंट्रोल में हो। लेकिन एक और भी शर्त है इनके साथ, यानी नंबर एक ये कि आपके कंट्रोल में है वो ताबेईन, आपके फॉलोअर्स हैं, आपके घरेलू मुलाजिम हैं, मगर गैर उलिल इरबते, जो किसी किस्म की गरज ना रखते हों। इरबा कहते हैं हाजत को, गरज को, ऐसी सख्त हाजत जिसको दूर करने के लिए हीले और तदबीर से काम लेना पड़े। ऐसी सख्त हाजत, हाजत किसको कहते हैं? जरूरत को। ऐसी सख्त जरूरत कि जिसको दूर करने के लिए कोई हीला या चारा करना पड़े, कोशिश करनी पड़े, मुराद है। गैर उलिल इरबति मिनर रिजाल, मर्दों में से ऐसे मर्द जो कोई हाजत न रखते हो। यहां इरबा से मुराद कौन सी हाजत है, यानी कोई शहवानी जज्बात न रखते हो। जो औरत की जरूरत महसूस न करते हो, ये शर्त है। ताबेईन गैर उलिल इरबति मिनर रिजाल, वो ताबे मर्द जो ख्वाहिश न रखते हो, जरूरत न रखते हो, किसकी? औरत की। यानी इससे मुराद वो नौकर हजरात नहीं है जो एक महीना काम करते हैं फिर भाग जाते हैं, फिर कभी आ जाते हैं फिर चले जाते हैं। नहीं, वो मर्द हैं कि जो औरत की हाजत न रखते हो। इसके बारे में मसलन उनके अंदर जिस्मानी अहलियत नहीं, या अकल कमजोर है उनकी, बेवकूफ से हैं, या इतना फक्र और गुर्बत है, इतनी मस्कनत है, ऐसे महकूम है कि उनके अंदर ऐसी कोई बात करने की कहीं से कोई जुर्रत ही नहीं, कोई निगाह बद डाल सकते ही नहीं, यानी जिनसे कोई खतरा ना हो। इब्ने अब्बास कहते हैं इससे मुराद वो सीधा सादा बुद्धू आदमी है जो औरतों से दिलचस्पी न रखता। कतादा कहते हैं ऐसा आदमी जो पेट की रोटी पाने के लिए तुम्हारे साथ लगा रहे और उसे कोई गरज ना हो। मुजाहिद कहते हैं वो बेवकूफ आदमी जो रोटी तो चाहता है औरतों का तालिब नहीं। शाबी कहते हैं वो जो साहिब खाना का ताबे व दस्त नगर हो, जिसकी इतनी हिम्मत ना हो कि औरतों पर निगाह डाल सके। इब्न ज़ैद कहते हैं वो जो किसी खानदान के साथ लगा रहे, हत्ता के गोया के उस घर का फर्द बन गया हो, उसी घर में पला बड़ा हो, जो घर वाली औरतों पर निगाह न रखता हो, न उसकी हिम्मत कर सकता हो, वो उनके साथ इसलिए लगा हुआ है कि उनसे उसकी खाने पीने की जरूरत पूरी होती। अबिताबेन गैर उलिल इरबति मिनर रिजाल, यानी अब ये रिजाल कौन से हैं? नामहरम। उनमें से ऐसे शख्स के सामने औरत आ सकती है कि जिनके अंदर ऐसे जज्बात नहीं। इससे क्या पता चलता है कि वो तमाम मर्द जो इनके अलावा हैं, उनके सामने औरत अपनी जीनत नहीं खोल सकती या उसको नहीं खोलनी चाहिए। अब तिफल या छोटे बच्चे, तिफल कहते हैं लड़के को, बच्चे, अल्लज़ीना वो जो लम यज़हरू, नहीं मुत्तले हुए, नहीं जाहिर हुए, अला औरातिन निसा, औरतों की छुपी बातों पर। औरात कहते हैं छुपी हुई बातें, छुपी हुई चीजें, पर्दे की बातें, औरतों के खास मामलात। ये भोले भाले बच्चे जिन्हें अभी औरतों के खास मसाइल का इल्म ना हो। और इसमें कौन से बच्चे मुराद हैं कि जो बालिग ना हो, जिनकी आवाज ना बदली हो, जिनके चेहरे पर कोई ऐसे असरात मर्दों वाले जाहिर ना हुए हो, ये जिनको औरतों की खुफिया बातें जो हैं, जिनको आप कह सकते हैं निस्वानी मसाइल, औरत और मर्द के जो फर्क हैं, उन बातों का कुछ बहुत इल्म ना हो। वला यद्रिबन बिअर्जुलिहिन्न, और एक और चीज कि अपने पांव न मारे, यानी पांव मार कर न चले, अपनी चाल में जो जीनत है उसको भी छुपाएं।

तो वो पर्दे की आड़ लेकर बिल्कुल अपने बेडरूम में बंद होकर बैठ जाती हैं कि जी खाना ला दो, जी फलाने ये कर दो, फलाने ये कर दो। ये इंतहाई गलत तर्ज अमल है। जब आप एक बहू की हैसियत से किसी घर में मौजूद हैं तो खाना पकाना भी होगा आपको। मैंने इसी हिजाब के साथ पकाया भी है, निकाला भी है, सर्व भी किया, बर्तन भी धोए हैं, झाड़ू पे लगाए, सब कुछ किया, अपना काम किया, जरा सा घूंघट खींच लिया। दूसरा यह है कि साथ साथ एहसास भी दिलाया कि वो बिला वजह इंटरफियर ना करें। देखिए कि आपके अपने अंदर एक बैरियर होता है, उससे आगे ना बढ़ने दें दूसरे को। इस तरह की पोलाइटली बात मत करें कि दूसरे को एक खाम खा की शे मिले। और करख्तगी में भी बात ना करें, नॉर्मल रवैये में आप बात करें। लेन देन भी होगा, काम भी होगा, मेहमान के तौर पर भी वो आएंगे, तो उसमें अपनी हदूद आपने खुद कायम कर ली, इसमें कोई और आपको फतवा नहीं दे सकता। और बाज़ुकत घर इतने छोटे होते हैं कि एक ही घर में अगर उनकी किसी जरूरत से आपके शहर में आए तो आप ही के घर में वो आ रहे हैं, तो उसमें अब ये तो नहीं आप कर सकेंगे कि बिल्कुल अलग कर दें उनको। अगर मुमकिन हो तो अलग ही हो, लेकिन अगर ना हो सके तो फिर यह है कि अपना काम काज अपनी जरूरत के मुताबिक करते चले जाएं। अब उन्होंने देखा कि भाभी और देवर बैठ के लतीफे सुना रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं। बाजू का पंजाब में मैंने ये रवाज तक देखा कि छोटा देवर है तो उसको दुल्हन की गोद में बिठाते हैं, और इसी तरह जूती छुपाई और पता नहीं दूध पिलाई, और ये खासतौर पर जो शादी के बाद की रस्में होती हैं, दुल्हन बनी बैठी औरत और उसका घुटना एक नामहरम आके पकड़ रहा है, ये कहाँ की हया और कहाँ का कल्चर है? इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अगर शौहर और वालदैन हिजाब न लेने दें तो क्या किया जाए? उन्हें कहिए कि आप हमारे साथ कब्र में चलेंगे और हमारे साथ अल्लाह के यहाँ खड़े होंगे और हमारी जगह पर आप जवाब देंगे, ठीक? और अगर हमको पकड़ होने लगी तो आप हमारी जगह पकड़े जाएंगे। आपको मालूम है ना वो रिवायत की एक औरत अपने साथ चार मर्दों को जहन्नम में लेके जाएगी, बाप, शौहर, बेटा, भाई। क्या हम बाकी सारे काम इनकी मर्जी से करते हैं? नहीं। जिस दिन अपने अंदर जो हो ज़ौके यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें, जिस दिन आपके अंदर यकीन आ गया कि ये अल्लाह का हुक्म है और इसमें मेरी भलाई है, उस दिन सब जंजीरें कट जाएंगी। और जब तक ये नहीं आता तो आप अपनी जंजीर में खुद बंधे हुए हैं। जिस चीज को इंसान हकीकत में करने का इरादा कर ले वहां कोई मुश्किल मुश्किल नहीं, और जो काम आप करना ना चाहें वो कर सकते भी हो तो कुछ नहीं करते। बहुत सी खवातीन मुझे बताती हैं, हमको ये डर था पता नहीं हमारे हस्बैंड क्या कहेंगे, और हमने किया तो उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा। खुद साख्ता खौफ है जो शैतान हमारे दिलों में डालता है। ऐसे देवर जो बच्चे से थे और हमारे साथ रह रहे हों, उनके जवान होने पर उनके साथ क्या मामला होगा? क्या उनको बच्चों या भाइयों की तरह लिया जा सकता है? अपने बच्चे भी अगर बड़े हो जाएं, और अपने बच्चे अगर बच्चे हैं तो भी जब आप सतर की हालत में नहीं या जीनत की हालत में हैं तो वो भी इजाजत लेकर आएं, और जब वो बड़े हो जाएं, ये देखिए ये वाज़े जवाब कुरान ने आपको दिया है, वइज़ा बलगल अत्फालु मिनकुमुल हुलुमा फलयस्तअज़िनु कमस्तअज़नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयाती वल्लाहु अलीमुन हकीम। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि भाई सिर्फ वो भाई होता है जिसको माने जाना हो या बाप की तरफ से, या फिर रजाई भाई जिसने साथ दूध पिया हो। बस हमारे माशरे में जो मुंह बोले भाइयों की किस्में हैं, कोई भाई नहीं है। किसी से भी हाथ तोड़ने की जरूरत नहीं है वरना खुद को मुसीबत में डालेंगे। हाँ, अखलाकी तौर पर आप किसी दुकानदार से कुछ ले रहे हैं तो आप उसको भाई कह के पुकार सकते हैं, भाई ये बात ऐसे नहीं ऐसे, ताकि एक अच्छी फीलिंग आए। क्योंकि किसी को भाई कह देना इस तरह, उसमें एक बावकार और एक एहतराम और एक पाकीजा बात हो जाती है। लेकिन भाई कहना और भाई समझना और भाई समझ कर फिर मजीद हदें अल्लाह की तोड़ते चले जाना, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो देवर को भाई कह सकते हैं आप, लेकिन वो भाई नहीं है, वो देवर है। क्या देवर के अलावा जेठ से भी पर्दा है? क्या वो किसी और नस्ल से ताल्लुक रखता है? अब आप कहते हैं कि मैं सवालों के जवाब न दिया करूं। हाँ, अगर देवर या बहनोई हाथ मिलाएं तो क्या करें? वही करें जो किसी भी गैर मर्द से हाथ मिलाते हुए करना चाहिए। आपको मैंने शायद पहले बताया कि मैं जब पहले दिन अपनी पीएचडी के लिए गई तो मेरे सुपरवाइजर जो था उसने, सबकी आदत है और बहुत सी मुसलमान लड़कियों से मिलाते हैं हाथ, तो वो अपने ऑफिस में था, जो ही मैंने दरवाजा खोला तो उसने खुद उठ के दरवाजा खोला, सामने आ गया और हाथ आगे किया। मैंने उसी वक्त सॉरी कर लिया।

तो आप कुछ रात रहे से अपने घर वालों को ले निकलें और खुद उनके पीछे चलें, और आप में से कोई शख्स पीछे मुड़कर न देखे, और जहां आपको हुक्म हो वहां चले जाइए।

0: खुद सैदा हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए
0: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
1: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
0: काफिर मुसलमान हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम

0: इस्लाम जिंदा,
1: इस्लाम जिंदा
0: हो गए।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
2: सामईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।
0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए।
1: बुद्ध ने सबू कलमा पढ़ा,
0: बुद्ध ने सबू कलमा पढ़ा, बुद्ध ने सबू कलमा पढ़ा,
1: काफिर मुसलमान हो गए।
0: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम।

0: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा,
1: काफिर मुसलमान हो गए।
0: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम।

0: इस्लाम जिंदा,
1: इस्लाम जिंदा हो गए।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।